सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारीअ जा आज़ाद कश्मीर जे चूंडनि में नवाज़ लीग ते धांधलियुनि जा इल्ज़ाम। मुलगीर तहरीक हलाइण जो ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी पंहिंजे बयान में चयो आहे त नवाज़ लीग हुकूमत जा ॾींहं गणजी चुका आहिनि। आज़ाद कश्मीर में पीपी कारकुननि नवाज़ लीग जी ॾाढ जो मुक़ाबलो कयो ऐं शहादत माणी। ही शफ़ाफ़ चूंड न पर कातिल इलेक्शन हुई। मीरपुर ऐं मुज़फ़राबाद में चोरी कयल सीटूं हुननि खां वापसि वठंदसि। नवाज़ लीग गौर सां ॿुधे संदन ॾींहं गणजी चुका आहिनि।

लीग जे आजाद कश्मीर में सादी अक्सरियत हासिल करण जी दावा, पीपुल्स पार्टी पाबंदी मड़ियल तंजीम सां गॾु हंगामा करण जो इल्ज़ाम, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला, कश्मीर में चूंडू शफ़ाफ़ माहौल में थियूं आहिनि, आज़ाद कश्मीर जे 45 सीटनि मां 23 नवाज़ लीग कामयाबी माणी आहे, महाजरनि जे 12 सीटनि मां बि 10 सीटूं नवाज़ लीग खटियूं आहिनि, धांधली कंदड़ 7 सीटनि मां रुगो 3 सीटूं खटे सघिया आहिनि। वफ़ाकी वज़ीर अता तारण चयो आहे त नवाज़ लीग जी कामयाबी मुख़ालिफ़नि खां हज़म न थी रही आहे। आज़ाद कश्मीर में नवाज़ लीग सादी अक्सरियत हासिल करे वरिती आहे। शर्जील इनाम मेमण जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। अवाम तरक़ीअ खे वोट ॾिनो।

सिंध जे सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेंबर नून लीग जे पंजाब ए वफाकी हुकूमत के फारम 47 तहत मिलियल हैराती हुकूमत करार डेई छडियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील इनाम मेंबर चयो त पंजाब ए वफाक में नवाज लीग हैराती मैंडेट जरिए इक़्तदार माणियो आहे, अञा भी नवाज लीग माज़ीअ मां सिखण लाइ तयार न आहे। नवाज लीग आज़ाद कश्मीर में धांधली कई, कश्मीरियुनि जे वोट ते धाड़ो हयो। आज़ाद कश्मीर

चूंडनि में 2024 वारी रिवायत खे वरजायो वियो। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बि तकबर ते ॿधल हुई। शरीफ खे हथी ॾियण लाइ प्राइवेट इक्विटी फंड जे क़याम बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत। मुल्की मुआशी तरक़ीअ लाइ निजी सीड़पकारी अंतर आहे। सीड़पकारीअ लाइ मुतबादल ज़रियनि खे बि हथी ॾियणी पवंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंद ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
3: न अदा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणन जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंद ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
5: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद,

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi. Banker ka.
4: FM Network par KTN News.
5: जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी शर्तनि ते आबने हरमुज ईरान पंहिंजे मौक़िफ ईरान जी वार्निंग ते जहाज़ वियो आहे नुक़सान खां खाई वापसि मोटी खाई रहिया आहिनि। यूक्रेन खां पलांद लाइ टिन हंधनि जी निशानदेही करे छॾी हुई पर यूक्रेनी इख़्तियारनि फोन करे पंहिंजी ग़लती तस्लीम कई ऐं आईंदा ॿीहर अहिड़ी ग़लती न करण जी पक ॾियण सबबि हमले जे इरादे खे मुलतवी करे छॾियो।

ऐं कराची में सुपर हाईवे ते जमाली पुल वेझो हथियारबंदनि जी फायरिंग में पुलिस अहलकार शहीद। पुलिस अहलकार ड्यूटी ते वञी रहियो हो त ॿिनि मोटरसाइकिलनि ते चार हथियारबंदनि खे निशानो बणायो। वरे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं घरू वज़ीर पारां वाके जो नोटिस। वरे वज़ीर आई जी सिंध एडिशनल आई जी खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। कातिलनि खे गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आणण जो हुकुम।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सो
3: इंजरी फकीरी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर नहीं आहे।

0: अभी बुधोपिया हैदराबाद मटियारी FM 9X बुधंदा रहो।
1: This time brought to you by
2: Diamond Glow Bleach Deep Up Brightness Diamond Skin Jazz Diamond Glow Bleach।
3: असाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्ठों की जान है,
3: अब दर्द को कहें
4: फकीरी डेक्स साथ।
3: जी हाँ,
4: पर हम बना
3: फकीरी ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: आसानी से जल्द
4: सोजिश
3: आराम पहुँचाने में मदद देता है।
4: असाबी
3: गर्दन और कप,
4: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए और जुम्मा जे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर
1: जीए हरी 1.6 जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अपना शहर घर मटियारी मटियारी की आवाज।
1: इट्स 11 टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हल्स अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल अबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN
4: के भी नुकसान बाद मोटी रहा है। यूक्रेन का पलांद लाए टिन हंधन जी निशानदही करे छड़ी हुई, पर यूक्रेनी इख्तियारन फोन करे गलती तस्लीम कई ए बीहर गलती नकरण जी खातरी ते हमले जो इरादो मुलतवी कयो।

सिंध समेत समूरे मुल्क में चालीह जा मातमी जलूस, सिंध में चालीह जलूसन लाइ सिक्योरिटी इंतिही सख़्त कई वई आहे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां निकतल जलूस मंज़िल तां तज़ी मातमी

0: सोलर है बैट।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते FM 91.6।
3: यारे ही गोडन जो सूर है चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़िया है,
4: न हर कम दुखियो लगे तो
5: तपोइचा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी
4: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
5: बिल्कुल अदा, कुदरती जजन सा तैयार कैल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंदते जल्दी जजब थी, सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मा आराम पहुंचाने में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोरन जो सूर, कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्दिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन फकीरी एनल
4: इस्तेमाल किए कजे।
5: रुगो मुतासिर हंदते डीएम में 3-4 भेरा

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 11:15 AM.
4: This time check is brought to you by
5: White Ash Beauty Cream.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap jildi infection se bachao ka behtareen zariya hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
2: jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
2: jhuriyo, chaiyo, keel mahaso aur garmi dano se hifazat ke liye.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap garmiyon mein de thandak ka behtareen ehsaas. Har roz kudrati nikhar.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है. फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: ये तू तो मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ मेरा vitamin और avocado की भरपूर खूबियाँ, जिसके minerals skin में fully absorb हो जाएं, skin को fair और fresh बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White Age Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White Age Beauty Cream, glowing skin का राज। A product of Biocon International Pakistan.

0: FM 91.6 सुंदर जो आवाज।
1: ओ पिता जाई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सुंदर जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 11:45।
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग फाल किरदार।
2: फकरिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों छाइयों कील महासों मैदानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: से ताहे वाली घूमता है। फकीरी प्रिकली हीट सोप
5: हट फरत हम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह नव लगी ते सिर्फ जी नेटवर्क ते।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

सिंध समेत समूरे मुल्क में चालीह जा मातमी जुलूस। सिंध में चालीह जुलूसनि लाइ सिक्योरिटी इंतिहाई सख़्त कई वई आहे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ासि शहीद बेन

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आवाज बुधंदा रहो।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
4: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क आवाज़।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: सिंध की एक और पहचान।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: We are talking right now. We're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
5: अमेरिकी सदर ट्रंप जो हिकु भेरो ॿीहर ईरान खां सरेंडर करण जो मुतालबो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब, यूएई ऐं कतर समेत ॿियनि मुल्कनि जे दरख़्वास्तनि ते ईरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। सुठो मुआदो करण लाइ ईरान वटि आख़िरी मौक़ो आहे। ईरान मुआदो न कयो त खेसि तबाही खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिकी सेनेट काम चयो आहे त ईरान जे बहरी नाकाबंदी जारी आहे। 44 बहरी जहाज़नि खे वापसि मोटायो वियो आहे, कुझु खे नाकारा बणायो आहे। अमेरिकी शर्तनि ते आबना हरमुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा। तेहरान आबरा हरमुज़ मां कंहिं बि मुतबादल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो ऐं न ई क़बूल कंदो। आबना ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि। नवां सूबा एजेंडा ते न आहिनि। आइन में का खोट आहे, खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल न कयो, आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त असां आइन जी भंजकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं। कीअं कंदो? हीउ सिस्टम अध सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे। चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वज़ीर सैद मुराद अली शाह तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 6 ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध में तालीम जी बाक़ायदा शुरूआत सां स्कूल ऐं निगरानी

सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीद मल्हायो पियो वञे। सिंध जे पुलिस आफिसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं गुलूं रखी सलामियूं डि॒नियूं वयूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी रावल पारां पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सचो त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं साराह जोगियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख्रु आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं विसारण जोगियूं न आहिनि। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेढ़ में पुलिस पहिरीं सिफ़ में रही आहे। सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादी

0: जारी। हज़रत इमाम हुसैन ऐं संदस जान निसारनि जी यादि में निकतल चालीह जा मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवां-दवां। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकतल जलूसनि जो सफ़र जारी आहे। कराची में मर्कज़ी मातमी जलूस लाइ 5000 खां वधीक अहलकार मुक़रर। सूबे जे ॿियनि शहर में सिक्योरिटीअ जा सख़्त इंतज़ाम थियल आहिनि। टंडो मोहम्मद खान जे इलाइक़े बुल्ली शाह करीम भरिसां ज़रई ज़मीन मां हिकु शख़्स जो तशद थियल लाश हथायो आहे। मक़तूल जी सुञाणप जनसाण सूमरो वासी नूर मोहम्मद उर्फ मामा नूरो सूमरे जे नाले सां कई वई आहे। लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच करे रहिया आहियूं। मेहड़ मां चार ॾींहं अॻु स्कूल वेंदे मुबैना तौर अगवा थियल टिन शागिर्दियाणियुनि खे अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दियाणी रोशनी, फातिमा ऐं तंजीला पवार खे पुलिस अदालत में पेश कयो। पुलिस पारां गिरफ़्तार मुख्य जवाबदार ज़ैन महर खे बि अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दियाणियुनि अदालत में बयान ॾींदे चयो त कंहिं बि अॻवान मर्ज़ीअ सां हैदराबाद मीरपुर ख़ास वयूं सथ कयो, कंहिं बि अॻवान नाहे कयो। ककड़ वेझो थरड़ी जादू शहीद पुलिस ते गुल बीफ कंडो बबुर खे गडा गाडे सां कंडो बबर खे भरियल गडाडे सां हथ बधी थाणे अंदर पोरेत थधल हुअण वायरल थी वई। पोरेत कंडो बबर चयो आहे त मिसकीन आहियां, काठियूं
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 1:15 PM.
3: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

थी, नाकाबंदी जारी रही त नतीजा खतरनाक निकरी सघन था। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहरिया ऐं फौज खे नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान आपना मुतबादल रस्ते जी इजाज़त क़बूल कंदो। आपना ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटाए रहिया आहिनि।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: राणा जख्म जे चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल
0: हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़्त रोज हर कदम अली वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो।
2: सारियो एतमाद साम त अली मुल कुरआन रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.3।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 3 PM. This time check is brought to you by
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
7: वाहे तैरान जे बहरी नाकाबंदी जारी आहे। 44 बहरी जहाजन के वापस मोटायो वयो आहे। पुज के नाकारा बनायो आहे। ईरान जंग वधाइण जो ख्वाहिशमंद न आहे। सरहदन जो दिफ़ा जारी रखंदो। तहरान खे अहिड़ो मुआशरो क़ाइम करण ते कम करण घुर्जे जेको दुश्मन खे मुदाख़लत ऐं विरांगो पैदा करण जो मौको न ॾे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशान चयो आहे त इख़्तिलाफ़नि जो ख़ात्मो परॾेही मुदाख़लत वारनि इम्कान खे घटि कंदो। अहिड़ो मुआशरो ठाहिणो आहे जेको दुश्मन खे ईरानी समाज खे विरहाइण या तबाह करण जो मौको न ॾे। इस्तीफ़ा न ॾींदसि, मुल्क लाइ कम कंदो रहंदसि। अमेरिकी शर्तनि ते आबना हर्मुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा। तेहरान आबना हर्मुज़ मां कंहिं बि मुतबादल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो न ई क़बूल कंदो। आबनाए हरमोज़ ईरान जी वार्निंग ते जहाज वापस मोटी रहा आहिनि। नवा सूबा एजेंडा ते नाहिनि, न ही आइन में का खोट आहे। खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो। आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त असां

0: जी भंकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त ही कम कीअं कंदो। ही सिस्टम अधु सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे। चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपुल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त छहनि ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमल जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे छहनि ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ायदा शुरूआति थी वेंदी। फ्रेम्स सां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत, एहतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी। केपी जे इलाइक़े लखी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज़ जो ऑपरेशन। केतिरा ई ख़ारजी जहनुम भेड़ा। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूद फोर्सेज़ ॻुझी इतलाह ते लखी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिरा ई ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं संदन थाक तबाह कया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾियारो अॼु मल्हायो पियो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पुलिस आफ़ीसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं, गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं। सदर आसिफ़ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ़ ज़रदारी चयो त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं साराह जोगियूं आहिनि। चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख्रु आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं विसारण जोगियूं न आहिनि। चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेहड़ में पुलिस पहिरीं सफ़ में रही आहे। सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी यादि में अज़ादारी जारी। हज़रत इमाम हुसैन अलाम संदसि जान निसारनि जी यादि में निकतल चालीह जा मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं नानकाणी डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकतल जुलूसनि जो सफ़र जारी। कराची में मरकज़ी मातमी जुलूस लाइ 5000 खां वधीक अहलकार मुक़रर। सूबे जे ॿियनि शहरनि में बि सिक्योरिटीअ जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त थियल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ, अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज़ हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

अल्लाह जाने वसदा है अली साढ़े छावा बिच जिंदगी गुजार दी है अली दिया छावा बिच अली दा है प्यार असा मंगिया दुआवा बिच गूंजता जहान बिच नारा अली अली है मस्ता ते मलंगा दा गुजारा अली अली है जानदा है हाल अली सुन दस

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हजारों में 72 का था और ये थे खुदा वाले, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

ईरान जंग वधाइण जो ख्वाहिशमंद नाहे, सरहदनि जो दिफ़ा जारी रखंदो। तहरान खे अहिड़ो मुआशिरो क़ाइम करण ते कम करण जेको दुश्मन खे मुदाख़लत ऐं विरहाङो पैदा करण जो मौको न ॾे। ईरानी सदर मसूद पज़िशान चयो आहे त इख़्तिलाफ़नि जो ख़ात्मो करे मुदाख़लत वारनि इम्काननि खे घटि कंदो। अहिड़ो मुआशिरो ठाहिणो आहे जेको दुश्मन खे ईरानी समाज खे विरहाइण या तबाह करण जो मौको न ॾे। इस्तीफ़ा न ॾींदसि, मुल्क लाइ कम कंदो रहंदसि।

0: अमेरिकी शर्तनि ते अब्न हर्मुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनेई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहिरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा। तेहरान अब्न हर्मुज़ मां कंहिं बि मुतबादल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो ऐं न ई क़बूल कंदो। अब्न हर्मुज़ ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापस मोटी रहिया आहिनि। नवां सूबा एजेंडा ते नाहिन ऐं ना ही आइन में का खोट आहे न, पर असां निज़ाम ते सचासीं त निज़ाम डिलीवर कंदो। सनाउला चयो आहे त असां आइन जी भञकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त ही कम कीअं थींदो। ही सिस्टम अध सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे। चूंड अमल मुकमिल थियण बाद टीवी नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त छहनि ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे छहनि ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ायदा शुरूआत थी वेंदी। फ्रेम्स सां स्कूल में शफ़ाफ़ियत, एहतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी। केपी जे इलाइक़े लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन केतिरा भेड़ा। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूद फोर्सिस गुझी इतलाह ते लकी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिरा ई ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं सदन थाक तबाह कया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾिहाड़ो अॼु मल्हायो पियो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पुलिस जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं, गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख़्रु आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानियूं विसारण जोगियूं न आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेड़ में पुलिस पहिरीं सफ़ में रही आहे। सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी जारी। हज़रत इमाम हुसैन अलाम संदसि जान निसारनि जी यादि में निकतल चालीह जा मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकतल जलूसनि जो सफ़र जारी। कराची में मर्कज़ी मातमी जलूस लाइ 5000 खां वधीक अहलकार मुक़रर। सूबे जे ॿियनि शहरनि में बि सिक्योरिटीअ जा इंतिहाई सख़्त इंतज़ाम थियल। सिंध आबादगार बोर्ड जलालपुर केनाल ते लाॻीतो कम जारी रखण ते गणती ज़ाहिर करे छॾी। जलालपुर केनाल जे तामीरी फौरी तौर रोगी केनाल रिथा रद्द करण जो मुतालबो। सिंध आबादगार बोर्ड जो इजलास महमूद नवाज़ शाह जी सदारत हेठि हैदराबाद में थियो। सिंध आबादगार बोर्ड चयो त जलालपुर केनाल रिथा 116 किलोमीटर डिघी आहे, जंहिं मां 1,72,000 एकड़ ज़मीन आबाद थींदी। वाधू ज़मीन खे आबाद करण लाइ पाणी किथां ईंदो कुझ बि नाहे ॿुधायो वियो। सिंध जा बि ख़दशा ख़तम नाहिनि थिया, जलालपुर केनाल रिथा क़बूल नाहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

0: संत जो आवाज उतरदा रहो
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
6: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News. Aap sun rahe the GAFM network par KTN News.
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
7: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ, अया साबी दर्द इतरो वधी बियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
8: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नतो करी?
7: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
8: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़ब थी, सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद दे थी।
7: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
8: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
7: इस्तेमाल कीअं कजे?
6: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
9: ईरान सां गॾु सऊदी अरब यूएई ऐं कतर बि ॻाल्हियुनि जी दरख़्वास्त कई हुई। ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त बि ईरान तरदीद कंदो आहे, नतीजनि जो इंतज़ार करणु घुर्जे। अमरीकी शर्तन ते अपना अगस्त खुलंदो, ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ई चयो आहे त ईरान अमरीका नाकाबंदी खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदी ते अमरीकी बहरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा। तेहरान अपना हरमुस मां कंहिं बि मुतबादिल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो, न ई क़बूल कंदो। अपना ईरान जी वार्निंग ते जहाज वापसि मोटी रहिया आहिनि। नवा सूबा एजेंडा ते नई आइन में का खोट आहे, खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल न आहे कयो, आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म सलाहकार सनाउल्लाह चयो आहे त असां आइन जी बजटरी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त ही कम कीअं कंदो। ही सिस्टम अधु सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे, चूंड अमल मुकमल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। पले वज़ीर मुआद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास, स्पेशल रिकग्निशन मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन सिस्टम शुरू करण जी मंज़ूरी डि॒नी वई। तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 6 ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमल थी वई आहे। सिंध जे 6 ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ायदा शुरूआत थी वेंदी। फ्रेम्स सां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत, एहतसाब ऐं निगरानी खे हथे मिलंदी। खैबर पख्तूनख्वा जे इलाइक़े लकी मुरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन, केतिरे काजी जहनम पेड़ा सिक्योरिटी सरियनि मौजिब फोर्सेज कुझु इतलाउ ते लकी मुरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिरा ई काजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं संदनि थाक तबाह कया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾिहाड़ो अॼु मल्हायो पियो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पुलिस आफ़िसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं, गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं। सदर आसिफ़ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ सरदारी के वक्त पुलिस मासूम जानन जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानियूं सारा चोगियूं आहिनि। वज़ीर आसिफ शबासी चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख्र आहिनि। गॾु वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानियूं विसरणु चोगियूं न आहिनि। बिलाल भुट्टो सरदारी चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेढ़ में पुलिस पहिरीं सिफ में रही आहे। सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी यादि में अज़ादारी जारी। हज़रत इमाम हुसैन अलसलाम ऐं संदसि जान निसारनि जी यादि में निकितल 40 जा मातमी जुलूस मंज़िल तरफ़ रवाना। कराची, हैदराबाद, मिर्कोखास, शहीद बेनसीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीजन जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकितल जुलूसनि जो सफ़र जारी। कराची में मरकज़ी मातमी जुलूस लाइ 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़रर। सूबे जे ॿियनि शहरनि में बि सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम थियल। सिंधाबाद कार पोर्ट जलालपुर कैनाल ते लाॻीतो कम जारी रखण ते घटती ज़ाहिर करे छॾी। जलालपुर कैनाल जी तामीर पूरी तौर रोके कैनाल रिथा रद्द करण जो मुतालबो। सिंधाबाद कार पोर्ट जो इजलास महमूद नवाज शाह जी सदारत हेठि हैदराबाद में थियो। सिंधाबाद कार पोर्ट चयो त जलालपुर कैनाल रिथा 116 किलोमीटर डिघी आहे, जंहिं मां 1,72,000 एकड़ ज़मीन आबाद थींदी। फादू ज़मीन खे आबाद करण लाइ पाणी किथां ईंदो कुझु बि नाहे ॿुधायो वियो। सिंध जा बि ख़दशा ख़तम नाहिनि थिया। जलालपुर कैनाल रिथा क़बूल नाहे।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद फॉर्मूला आपकी जल्द को भी और कुदरती डी स्किन ब्यूटी क्रीम। असली ग्लो हर दिन का शो, हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 बुधंदा रहो।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: यार कुछ डीहन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
2: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
2: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी
1: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
2: न दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध ऐं चेल जी तकलीफ सट धक लॻण पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे
1: इस्तेमाल कीअं कजे
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो जी हा फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: कोहेतूर पर गूंजती मूसा की ये सदा है, जो हर शय में नजर आए बस

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GA FM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जिए

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: बटन दबा बटन दबा बटन दबा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: ऐथे अम्बला दे होने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी।

Yeah.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी 1.6 उधर
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: かるんだ、岡本さん。
1: हक का सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खिते की बनी है आवाज
2: जीए एफएम

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पीपल्स पार्टी फेरो

0: वेंदो। ईरान वटि सुठो मुआदो करण लाइ हीउ आख़िरी मौको आहे। तेहरान वाइदे ते सही न कई त तबाह थी वेंदो। अमरीका सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि जे पहिरें मरहले में आपरा अर्मुस खे खोलियो वेंदो। ॿियो मरहलो ईरान जे एटमी हथियारनि बाबति हूंदो। तेहरान खे कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल करण न ॾिना वेंदा। ईरान सां गॾु सऊदी अरब, यूएई ऐं कतर बि ॻाल्हियुनि जी दरख़्वास्त कई हुई। ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त बि ईरान तरतीब कंदो आहे, नतीजनि जो इंतज़ार करणु घुर्जे। अमरीकी शर्तनि ते अपना हर्मुस न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहे। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमरीकी नाकाबंदी खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदी ते अमरीकी बहिरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा। तेहरान अपना हर्मुस मां कंहिं बि मुतबादिल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो, न ई क़बूल कंदो। अपनाए हुर्मुज़ ईरान जी वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि। सिंध जे सरकारी स्कूल्स में स्वादन ऐं बे अमले जी हासिल लाइ फेशियल रिकग्नेशन मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन सिस्टम शुरू करण जी मंज़ूरी। 17 अगस्त खां शुरूआती तौर 6 ज़िलनि में तदरीसी तोड़ी गैर तदरीसी अमले जे फ्रेम ज़रिए हाज़िरी लॻंदी। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त शुरूआती तौर 6 डिवीजननि जे 1-1 ज़िले में फ्रेम्स जी शुरूआत थींदी। इहो सिस्टम ऑनलाइन तोड़ी ऑफलाइन कम कंदो। वॾे वज़ीर चयो आहे त फ्रेम्स सां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत, एहतसाब ऐं निगरानी खे हथी मिलंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

नवां सूबा ठहिण ख़राब ॻाल्हि नाहे, पर छा मुल्क हिन जी सट सहे सघे थो? नवां सूबा ठहिण एतिरो आसान कम नाहे। मुल्की हालतुनि तां ध्यान हटाइण लाइ नवां शोशा छॾिया पिया वञनि। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म जे मशवरे खां सवाइ अहिड़ी ॻाल्हि नथो करे सघे। मुल्क खे आइन मोज फैलाइण जी ज़रूरत आहे। जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जी क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फज़लुर रहमान चयो त बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल न थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जे बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर बणजण बाबति ॼाण न आहे। मुल्क में मर्ज़ीअ जूं हुकूमतूं ठाहिण सां जमहूरियत अॻिते न वधंदी। मुल्क में क़ौमी ऐं इंसाफ़ ते ॿधल पॉलिसी जी ज़रूरत आहे। नवां सूबा एजेंडा ते नाहिनि। नई आइन में का खोट आहे? खोट निज़ाम में न, असां में आहे। असां आइन ते अमल न कयो, आइन ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त ही कम कीअं कंदो। अधु सदी खां कामयाब निज़ाम अॻिते बि कम कंदो रहंदो। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह यास लतीफ़ अली जे चयो आहे त नवनि सूबनि जी ॻाल्हि मुल्क ख़िलाफ़ साज़िश आहे। आलमी साम्राज्य जी ताक़तूं पाकिस्तान खे कमज़ोर करण चाहिनि थियूं। सिंध जा माण्हू सिंध विरहाइण या नवनि सूबनि वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा। 8 करोड़ सिंधियुनि जा 16 करोड़ हथ पंहिंजी धरतीअ जी हिफ़ाज़त लाइ मुतहिद आहिनि। सिंधी क़ौम पंहिंजी धरती सुञाणप ऐं वहदत जे तहफ़ुज़ लाइ हर क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयार आहे। इक़्तदार जा ख़्वाहिशमंद कुझ सियासी अंसर अवाम में नफ़रत पखेड़े रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ मोहसिन नक़वी खां इस्तीफ़ा वठे। वज़ीर आज़म चए थो सिस्टम ठीकु आहे ऐं मोहसिन नक़वी चए थो त सिस्टम दुरुस्त कम न पियो करे। मुल्क में नवनि सूबनि जी का गुंजाइश न आहे। सिंध जो अवाम कंहिं बि सूरत में नओं सूबो क़बूल न कंदो। खैरपुर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे JUI अॻवान राशिद महमूद सुमरो चयो त सिंध में सरदार जो पुट हुआ बाद 2 कलाकनि में बाज़ार थी वञे थो, पर फज़ीला सरकी खे 15 साल ऐं प्रिया कुमारी खे हुआ थिए 5 साल गुज़री विया आहिनि, उहे अञा बाज़ियाब न आहिनि थियूं।

आलमी मार्केट में तेल घटण का पोए पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम शयूं सस्तियूं थियण जी उम्मीद। ओगरा ज़रिए जो चवण टे रुपया 96 पैसा डीजल 4 रुपया 7 पैसा फी लीटर सस्तो थियण जो इम्कान आहे। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में घटताई रुगो 1 ॾींहुं 5 अगस्त लाइ कई वेंदी।

सिंध सरकारी स्कूल्स में उस्तादन ऐं ॿिए अमले जी हासिल लाइ ऑफिशियल रिकग्नेशन मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन सिस्टम शुरू करण जी मंज़ूरी। 17 अगस्त खां शुरूआती तौर 6 ज़िलनि में तदरीसी तोड़ी गैर तदरीसी अमले जे फ्रेम्स ज़रिए हाज़िर लॻंदी। रिपोर्ट में ॿुधायो वियो त शुरूआती तौर 6 डिवीजननि जे 1-1 ज़िले में फ्रेम्स जी शुरूआत थींदी। इहो सिस्टम ऑनलाइन तोड़ी ऑफलाइन कम कंदो। वॾे वज़ीर चयो आहे त फ्रेम्स सां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत एहतसाब ऐं निगरानी खे हथे मिलंदी। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे इलाइक़े लखी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन खे तरीक़ा जी जानो भेड़ा। सिक्योरिटी ज़रियनि मुजिब फोर्सेस गुजे इतलाउ ते लखी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे ताक़तनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिरा ई ख़ासी दहशतगर्द भाची विया ऐं सदन ताक़त तबाह कया विया। सिंध हुकूमत जो सेप्टेम्बर खां ईवी टैक्सी सर्विस जा नयूं डबल डेकर बसूं कराची आण ऐं हलंदड़ साल जे आख़िर खां मरहलेवार वधीक 1000 ईवी बसूं अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल करण जो फ़ैसिलो। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील नामेमर जी सदारत हेठि इजलास में दाड़काणे खां कंबर ऐं कंबर खां शहदादकोट ताईं पीपल्स बस सर्विस जा नवां रूट जल्द शुरू करण जो बि फ़ैसिलो। शजील नामेमर चयो आहे त रेड लाइन BRT मनसूबे जा सभई डिपो मुक़रर मुदे अंदर मुकमल कया वञनि। डबल डेकर बसनि सां जदीद मयारी ऐं आराम वारियूं सफ़री सहूलियतूं मिलंदियूं। शहरियुनि खे जदीद

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: The passage that follows is not directly from any of the holy scriptures, but I do believe that it tallies with the teachings regarding faith and will. Ey ibn Adam, ek teri chahat hai aur ek meri chahat hai, par hoga wahi jo meri chahat hai. Bas agar tune apne aap ko support kar diya uske जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है. पर अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है. फिर वही होगा जो मेरी चाहत है.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: सच जो जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: चौमासी बरसातन ऐं आफ़तन खे मुंहुं ॾियण जे इंतज़ामनि ते ब्रीफिंग ॾिनी। थर्मो जे फील्ड मार्शल खे सलायो जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ लाइ हुते ज़ोर। फील्ड मार्शल चयो त पाक फ़ौज इंतज़ामिया ऐं NDMA जी हर मुमकिन मदद लाइ तयार आहे। इमदादी रेस्क्यू ऐं बहाली जे कार्रवाईअ में पाक फ़ौज भरपूर किरदार अदा कंदी।

0: सेंट्रल पुलिस दस्ते सलामी डिनी सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद ते आईजी खैबर पख्तूनख्वा पारा कोर कमांडर पेशावर जी आजियां कई कोर कमांडर पेशावर जी पुलिस के शहीद की यादगार से हाजिरी भरी ए बुलंद दर्जन लाए दुआ कई दहशतगर्दी अंजाम ते पहुंचाए वेंदो। कोर कमांडर पेशावर जो चवण हो तो दहशतगर्दन की हर कीमत मंतकी अंजाम ते पहुंचाया वेंदो। कोर कमांडर पेशावर पारा सेंट्रल चुस्त दस्ती सेंट्रल कमांडर पेशावर की पुलिस यादगार से हाजिरी दिनी बुलंद दर्जन लाए दुआ पढ़ी। कोर कमांडर पेशावर जो चवण तो दहशतगर्दन कोर पुलिस ऑफिसर को पुलिस के चुस्त सलामी डिनी सेंट्रल पुलिस ऑफिस आई कमांडर पेशावर की आजियां कई वही। कोर कमांडर पेशावर चो दहशतगर्दन तकी नाजिन ही हुई ना उत्तरासी शॉर्ट ब्रेक ब्रेक विच केटीएन न्यूज़।
1: जहबाज हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी 2.6 सिंध जो आवाज उधर रहो।